अपना काम भूल गए। जे राजे की मालिश कर ए ना गया राजा इन सजा देवेगा। ता परमेश्वर ने आप सहन नाई का रूप धारे। लोग कहते नहीं रब किथे रब किन्ने देखे। जे रब देखना है आओ सैन नाई वर्गा मन बनाइए। ओ दे नाल मन जोड़िए ता ओ रब मिलेगा। जे साडे मना विच प्यार ही नहीं ता सानू रब किवें मिलेगा। रब है उन्हां नू मिलदा है जिन्हां दे मन विच प्यार है। तुहाडे सामने है सैन नाई कीर्तन विच बैठा है ते भुल के कि मैं राजे कोल जाना है। पर परमेश्वर नहीं भुलिया भगत की पैज रखने वास्ते उस परमेश्वर ने

खिड़िया नहीं रहना। आप वेखते हो बसंत ऋतु आउंदी है, फुल खिड़दे हन फिर खिजां हो जांदी। इसे लई हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन, ऐ मनुख तेरा जीवन सदा इसे तरह नहीं खिड़िया रहना।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय का बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगती के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन, इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे हैं जंग करन लई, ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उसनूं भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या तां सिखां ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो, तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो, कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख। सुलही का हाथ

भगत अम्बरीक बारे भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच अम्बरीक मोह वर्त है रात पई दुर्वासा आया ए राजा अम्बरीक जिन्हां दे पिता दा नाम ना भाग सी राजा अम्बरीक दा राज मध्य भारत उड़ीसा वाल सी। ए राजा अम्बरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा। राज भी कर रहा है पर नाल भगती भी। ए दी भगती तों दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र

पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया और दान पुण करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करते सन, इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अमरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेक वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी, नेक बड़ा सी, दान पुन करके ए राजा अमरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे आ रस्ते दे विच दुर्वासा रिखी का मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिखी नूं नमस्कार कीती, पर दुर्वासा रिखी क्रोधी बड़े सन। कहन लगे, राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे हैं? राजा अमरीक कहन लगे, मैं बिंद्रावन तो आ रहा हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ, भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिखी कहन लगे, ठीक है राजन, जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना, मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अम्बरीक नाल मेल होया। ते हुण पेड़ अस उपारना, ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अम्बरीक कहन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ये मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा ऋषि। चाहिदा तां इह सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अम्बरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अम्बरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते हैं।

दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म किया, ओ चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है, भगत अमरीक नू मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्भाषा रेखी एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म दा काम करन लगे। पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करते ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए, पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्भाषा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड़ी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड़ी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड़ के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्भाषा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्भाषा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ये भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हाँ, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नू प्यारी है। तां की होया, ब्राह्मण पढ़ना जियो लै कि ओ ब्राह्मण दुर्भाषा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण पढ़ना जियो लै रखिया ना हंगण देव सुभाया, हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नू तैयार नहीं, क्योंकि जिन्नू भगवान मारे उहनू फिर कौन बचावे। ए दुर्भाषा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नू, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहन लगा ए मेरे वस दी गल नहीं, ता दुर्भाषा ऋषि शिव लोक नू चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे हुण मेरे भी वस दी गल नहीं, दुर्भाषा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नू गया। ता ब्रह्मा जी कहन लगे तेनू बचाना हुण मेरे वस दी भी गल नहीं। ता फिर दुर्भाषा ऋषि बैकुंठ नू चला गया विष्णु भगवान दे कोल। ता विष्णु भगवान कहन लगे कि मैं भी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने, इंद्र लोक शिव लोक तज, ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारियों पासियों इसनू आसरा जदू ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्भाषा ऋषि के सुदर्शन चक्र मेरा पिछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन, सिख दे सबना समझाया देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने, सारिया ने सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्भाषा तू भगत नू बुरा के, तू भगत नू दुख देना चाहे, इस करके अगर वो भगत चाहेगा ताई तू बच सकेगा, नहीं ता तेरा बचना बड़ा औखा है।

को परमेश्वर किस तरह उन्हें भगत अमरीक की रखा की थी। नाव ने दे ठाकर दई सुदामे त्रू अटल अज हूना टरियो अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी। त्रू भगत ते कृपा की थी भगत हेत मारियो हरनाकश भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाक्ष का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते ने केसव परमेश्वर नू के सोने केसा वाला परमेश्वर ये वो जरा परमेश्वर है वो भगतां दे वास है। इस वास्ते तो अज तक वो बल राज के द्वारे से खलोता होया है। तो गुरु साहब जी भी बाणी विच कहंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन किया राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुस भी सिमरन करो दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नू

मंगा रहे थे। तेरी हस्ती जे कोई है जीव, तू कदे अपनी हस्ती नु पछाणन दा जतन करे ते फिर ओदी हस्ती दी पछाण हो जा। रोज पढ़ दे करता पुरख एक ओंकार सतनाम, करता पुरख आप तां कीते होए हन ते साहिब कहिंदे ने करते की मित ना जाने की आ। जो सुभाव है सो वर्ती आ, जो ओनू चंगा लगदा है सो वर्तना है। कीते होए दी की हस्ती है कि करते दे काम विच, क्योंकि ओ तां बीओ पूछ ना मसलत धरे, जो किछ करे सो आपे कर। आग्या आवे आग्या जाए, आगे पाछे हुक्म समाए, ओदी रजा तो बारिया जाके की मैं वंगार प्रवान कर सकना। साहब कहंदे ने पंच तत् कर तुद सिष्ट सब साए, पंजा तत्तां दी सारी रचना मेरे मालिक तू कर दित्ती। किसे दी हस्ती है कोई छेवां तत् बना सकिया होवे अज तक? गलती है मनुख दी इस सारी सृष्टि विच, कदे ख्याल करिए ना, इस धरती ते साडे वर्गे बाकी जीवां दी गल छड्डी, बाकी 84 लाख जीवां दी गल छड्ड दे, साडे वर्गे 4 अरब बंदे जीउंदे वसदे इस वेले, वध भी जाणगे घट भी रहे ने। इस 4 अरब बंदे दी बोझ वाली यह धरती, एक निक्का जिहा टुकड़ा है किसी सूरज का, जिहदी रोशनी नाल यह तत्ती है। विज्ञानक कहिंदे इस सूरज नालों किते अरबां वरे पहला यह टुट गई है, ठंडी हुंदिया हुंदिया जीवन का कारण बन गई है। हालांकि कारण बनाउण वाला कोई होर बैठा है, कारण वो बना रहा है, वह कहिंदे ने बन गई है कारण, उसे सूरज के दुआले घूम रही है। ते फिर कहिंदे ने अगे कहिंदे सन सूरज स्टेशनरी है, सूरज खलोता है धरती चल रही है। कहिंदे ने नहीं, हुण यह सारे परिवार नूं लै के, मंगल बुध बृहस्पति नूं लै के, इन्हां सारे ग्रह नूं लै के सूरज भी चल रहे हैं, सूरज भी किसे महासूरज के चक्कर विच है। 150 करोड़ सूरजा की गिनती भी कर ली इन्हां दे कंप्यूटर ने कि 150 करोड़ सूरज आकाश में चमक रहे हैं, जिन्हां चों एक यह सूरज है, और ये नालों बहुत वड्डे वड्डे सूरज ने, बहुत छोटा सूरज है। जरा ख्याल कर लेना कि एक एडे छोटे जिहे सूरज की छोटा जिहा टुकड़ा मात्र धरती, इस धरती से 4 अरब बंदे, उन्होंने बंदियों चो एक मैं, मेरी हस्ती की होगी, कुछ भी तो ना हो। पर नहीं, हर बंदा यह चाहता है मैं केंद्र हो जावा, धरती मेरे द्वारे चले, सूरज मेरे द्वारे चले, चंद्रमा मेरी परिक्रमा करे, वाहिगुरु जो कुछ करे वो मेरी मर्जी मेरी इच्छा मुसाब करे। और जदों बंदा इच्छा करता है तो इच्छा की पूर्णता नहीं होती, क्योंकि इच्छा की हद कोई नहीं, इच्छा बंदा लम्मी तो लम्मी करता है, पूरी होंगी नहीं तो फिर झोरा बन जाता। इच्छा विच दुख है, रजा विच सुख है। जदों बंदा कहे जो हो रहा है वधिया, जो कुछ होवे सिर मथे प्रवान करता चला जावे तो सुखी है। साहब धन गुरु नानक पातशाह का रोज जप जी पढ़ते हो, साहब कहते ने केव सचियारा हुई है, केव कूड़े टुटे बार, उल्टे पासे चलन तो किवें बचिए, कूड़ दी पाल किवें टुटे, कूड़ दी कंध जो मेरे ते रब दे विचकार पई हुई है किवें टुटे, पाल कंध नूं कहिंदे, मैं सचियार किवें बणा, ओहदा उत्तर इक्को ही बख्शिया। साहब कहते ने हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, रजाई दे हुक्म विच तुर, तू रजा वाले दे हुक्म विच चल, जिदी रजा चलदी है पई वह चलाई जांदा है, किते किते कुछ तेरी मर्जी दा या तेरी इच्छा दा हो जांदा है ते तू भुल जांदा है कि मैं करवा लिया या मेरी मर्जी दा हो गया। ऐसा है कि तेरी मर्जी ते ओहदा कीता किते सबब नाल रल गया, होर गल कुछ नहीं हो, तेरी इच्छा ते ओहदी करनी किते सबब नाल रल गई है ते तू समझिया मेरी मर्जी पूरी हो गई, ऐसी गल नहीं। मर्जी तां उसे दी चल रही, रजा तां उसे दी चल रही, ए भी ओहदी रजा कि उहने तेरी मर्जी ते अपनी रजा इकट्ठी करती होवे किसे सबब नाल, पर जे किते ओहदी रजा ते तेरी मर्जी नहीं रलियां ते इहदे विच आके जे गिला करेगा झोरे नाल भर जाएगा, फिर भी जे शुक्र विच रहेगा आनंद बनिया रहेगा। और ऐसे लोग होए ने, गुरमत विच इह गल दृढ़ कराई गई, बार बार दृढ़ कराई गई, ते कुछ लोगों ने गुरमत अनुसार
एक गुरमुख प्यारे इको एक नौजवान पुत्र ग्रेजुएशन कर ली है बीमार हो गया बीमारी ला इलाज हो गई गुरुद्वारे मत्था टेकन गए ने सिंगनी नू कहंदे ने तुसी घर बैठो हालत काका जी दी ठीक ने मैं गुरुद्वारे जाना मैं आ जावांगा तुसी चले जाना मगरों बच्चे ने प्राण त्याग दिते सबर वाली बीबी ने गुरसिख बीबी ने वेखिया इको एक पुत्र नौजवान पुत्र पढ़िया लिखिया पुत्र बरसरे रुजगार होने वाला पुत्र अखां दे सामने दम तोड़ गया हाथ बन्ने ने ममता ने अंदरों उछाला मारे है मगर गुरसिखी ने उहदे ते दबा पा लिया कब्जा कर लिया है उस आत्मा नूं अपने हत्थां च लै लिया सिखी ने मोह दे वस नहीं जाण दिता उठी है कुंडा मारिया गुरुद्वारे आ गई आके संगत च बैठ गई जुड़े बैठे सिंह ने परत के वेखिया भी नहीं अरदास हो गई प्रसाद लैण वेले निगाह पई ये तां आई बैठी समझ गए आप ते ही समझ गए कि छड़ के आने वाली तां हालत नहीं सी छड़ के आ गई ते छड़न वाली गल ही हो गई इशारा कीता बीबी ने सिर दे इशारे नाल दस्या भी कोई नहीं उठ के खड़े हो गए साध संगत जी एक काका जी सन वह गुजर गए ने ते तुहाडी जे कृपा होवे ते उठ के चार प्रेमी दास दे नाल चलो चल के उन्हां दी मिट्टी टिकाने लाए हुण संगत नूं पता है इहदा इको एक पुत्तर है तुर गया मगर किस हौसले नाल गल कर रहे गुरुद्वारा साहब तो बाहर निकले ने लोकां ने अफसोस करना शुरू किया वह कहंदे ने शुक्र है किसे प्रेमी तो ना ही रहा गया बहुते लोग समझते ने भी रवा दिओ इस वेले पिटा दिओ इस वेले हंजू कढ़ा दिओ इस वेले कहंदे ने सरदार जी एडा जबत ठीक नहीं वो कहंदे ने जबत कादा मैं ता करजई हां मालिक दा देनदार हां जे ए भी ना आउंदा आ जेड़े 22-23 वरे मेरे कोल कट गया जे ए भी ना आउंदा किन्ना सुख वेखिया किन्ना प्यार दिता उसने किन्नी मेरी झोली उन्हें ममता नाल भरी किन्ना खेड़ा उसने मेरे वेड़े च वरताया जे ए भी ना आउंदा फिर मैं की कर लैंदा जे इन्ना भी वो मेरे घर च ना आउंदा फिर मैं की कर लेंदा मैं मालिक दा देण आ रहा कि मैनू सानू दोहां जीआं नू वेड़े च रज के हसण दा मौका उहने दित्ता रज के उहदी सेवा करन दा मौका दित्ता उहदी रजा उहने भेज दित्ता उहदी रजा उहने बुला रिहा मैं झोरा जे तां मेरे झोरे कीते आ आहा क्या बात है बाबा जी ने एक बड़ी प्यारी गल कही साहिब कहिंदे ने नानक बोलण झखणा दुख छड मंगीए सुख कदे कदे बंदा खाम खा दुखी होके सुख दी इच्छा करदा है ते झोरे नाल भरिया होया कई बारी वागरू नूं गालां कढ़न तों वी बाज नहीं आउंदा गिला करदा करदा बहुत अग्गे तक वध जांदा कहिंदा मैं तेरा की बिगाड़िया सी कदे किते सवाल कर दईए ना बंदिया ते इत्थों पुछिए तू सवारिया ही की रब दा तां छड तू की सवारना है तू अपना ही की सवारिया किसे दा ही की सवारिया बिगाड़न दी गल तू छड तू बिगाड़िया की नहीं बड़ा कुछ बिगाड़िया रब नाल बिगाड़िए ते सारा कुछ बिगाड़िया ते हुण भी जे तू झोरा कर रहे हैं गिला कर रहे हैं तां उहदे नाल बनाउण वाली गल नहीं कर रहा बल्कि बिगाड़न वाली गल कर रहा मन मूर्ख काहे बिरलाई है पुरब लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रब देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो किछ करे सोई पलमान भूला काहे फिरे अजान कौन मस्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग नहीं तू इस तरह कर राम नाम जप हृदय माहे नानक पत सेती कर जाए साहब कहने नानक बोलन चखना चख मारन वाली गल है दुख छड मंगी है सुख ए ता मालिक दी रचना है सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप जे तेरे बोले दा उथे असर कोई नहीं ते चुप रहना चंगा नहीं भला जो तिस भावे सोथी है नानक क्या मनुख तेरी हस्ती कोई तेरे कोल सब तो वड्डा सुख दा साधन ए है कि जो किछ करे सोई पल मान इथे साहिब कहंदे ने ओदी रजा च आउण वास्ते आवत किने ना राखे आ जे आउणा तेरे हाथ च नहीं ते जाना तू किवें अपने हाथ च लैणा चाहुणा जावत क्यों राखिया जाए ओदी तां रचना है जिवें हरण दे उत्ते एक माल टिंडा दी लगी हुंदी एक भरी गई एक सखणी हो गई एक थल्लों भर के आ रही कुत्ते सखणी हो रही है एक चक्कर चल रहा है रचना दा ओदा चक्कर है
जैसे हरट की माला टिंड लगत है, एक सखनी और फेर भरियत है, तैसो ही ये खेल खसम का, ते तू ता एक छेवा तत नहीं बना सकता, ओदे पांच तत्ता विच कोई अजे तक तब्दीली नहीं कर सकिया, ना ते इथों कदे हो सकनी, ओदी बनाई हुई रचना की गिनती कदे ना कर सकेगा, वो तेरे कंप्यूटर ने 150 करोड़ गिण के भी कह दिता, इन्ने को असा गिण लए ने पता नहीं हैण किन्ने, इन्ने को असा गिणे ने, जिन्ने को साडियां दूरबीना ने देखे ने, टेलीस्कोप्स ने देखे ने, कंप्यूटर गिण सकिया है, इन्ने को दा सानू पता है, पता नहीं कितने इन्हां तो कई गुणा किन्ने होर होणगे, तैनू तां ओदी रचना की गिणती नहीं पता, ते तू ओदी रजाव च दखल देण वाला कित्थों आ गया, ओदे नाल बेहतर यह नहीं कि तू अरदास कर, हथ बन दे, निमाणा होके, नितणा होके, रजाव च राजी होके।

अंदर कौतक वरता रहे। ड्योड़ी च भाई प्राणा जी बैठे दर्शन करन उचित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखिया, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना है, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा ले। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने वापर रहियां ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, भाई गुरदास जी भाई पराणा मालक दी रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहे हैं। तेरे कोलों नहीं सहा, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा बादशाह, मैनू तुसी आग्या दियो मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कह लगे भाई पराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करन दा फिक्र कित्थों पै गई, तू फना करन दियां ताकतां कित्थों आ गईयां तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहिब हस के कहिंदे ने भाई पराणा जे मेरे चरणा चों तबाह करन दियां ताकतां तेरे कोल आईयां ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है, तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, ओदी रजा विच रहो। साहिब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढे ते रखिया। ओह जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्हां ने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया बड़ा मारिया, पर मालक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती सहनशीलता सदका, फिर भाई पराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदिया होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है।

पिंड दिया तुद आपे सारी रचना तू आप ही बनाई तुद आपे कारे लाया जेहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे जेहा तुद तुर लिख पाया जो रचना बना के जो लेख लिख के तू भेजे ओवे कोई प्या चल दे पंच तत् कर तुद सिष्ट सब साजी सारी सृष्टि पंजा तत्ता दे हिसाब तू बना दिती कोई छेवा करे हो जे कुछ कीता होवे किसे कोल हुंदा ता है नी छेवा तत् इक ना सतगुरु मेल तू बुझावे जिन्हां नू सतगुरु मिल पिया उन्हां नू सोझी आ उन्हां ने इस गल नू समझ लिया ते जेड़े मन दे पिछे लगदे पए ने रोंदे पए ने साहब कहंदे ने जिन्नी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना एक मनमुख करे से रोवे मनमुख रोंदे ने गुरमुख शुक्र करदे ने।

0: देह दस मन चाओ न जाए सूर्य देह दस मन चाओ न जाए सूर्य
1: होए पवित्र सही चरना धूलिया।

कतहु सुचेत होके चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होके सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्ताद विच फरमान दी।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं हुई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दिओ आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए। ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मूंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है, केड़ी

जछ गंधर्व उरग कहूं विद्याधर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होए के पुराण को पढ़त मत कतहूं

देत हो, कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

सूरज में सस में नभ में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सो कहाने जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

कर रहे हैं। ए बेनती कर रहे भीखम शाह, जो जात का मुसलमान है, पंजाब की धरती का रहन वाला, आज भीखम शाह जदों सुबह नमाज अदा करन लगा, भीखम शाह दे नाल सारे मुरीद भी सन, और जिस वेले पश्चिम वाल भीखम शाह नमाज पढ़न वास्ते खड़ा होया, तां भीखम शाह नू अदुती प्रकाश दे दर्शन होए, तां भीखम शाह ने सजदा पश्चिम वाल करन दी बजाए पूर्व वाल कीता। सारे मुरीद पुछन लगे, आ भीखम शाह जी, आज तक तुसी रोज इतनी उम्र बीत गई, सजदा पश्चिम वाल करके नमाज अदा करते हो, क्योंकि हर एक मुसलमान पश्चिम वाल सजदा करके नमाज अदा करदा, ते आज तुसी पूर्व वाल क्यों सजदा कीता? तां भीखम शाह कहन लगा, जिस खुदावंद नूं मैं रोज पश्चिम वाल नमाज अदा करदा सा, आज उसने पूर्व दे विच पटने शहर दे विच जन्म लिता है। सात सगत बोलो श्री। सारे मुरीद हैरान रह गए। भीखम शाह कहन लगा, हां जे मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो फिर सारे चलो पटने दी धरती ते, किथे बिहार दी राजधानी पटना, किथे पंजाब पटियाले दे कोल रहन वाला भीखम शाह अपने मुरीदां नूं लै के, उस वेले कोई रेल गड्डियां दे साधन नहीं सन, एक घुड़सवारी दे साधन होया करदे सन, अपने मुरीदां नूं नाल लै के कितने दिन यात्रा करदा होया, जदों भीखम शाह उस स्थान ते आ पहुंचिया जिथे माता गुजरी दी कुख विचों धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे घर गोबिंद राय जी प्रगटे। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन करन भीखम शाह पंजाब तो तुर के पटने दी धरती ते आया, और आके अरदास कीती के मैनू एक वरा उस बालक दे दर्शन कराओ जिसने तुहाडे घर जन्म लिता है। माता गुजरी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे माता जी, माता गुजरी जी कहन लगे, अजे साडा जो ए लाल है बहुत छोटा है, ए बालक छोटा है, असी अजे 40 दिन भी नहीं होए, इनू बाहर नहीं कढ़ना।

पंडित सा सत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तरभव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी पर त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैस पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।